परम सत्कार्य गुरु प्रसाद संगत जी। अरदास, गुरसिख पास एक बहुत वड्डी शक्ति, एक बहुत वड्डी ताकत, एक बहुत वड्डी विल पावर है। किसी कार्य नूं आरंभ करना होवे तां वी अरदास, किसी काम नूं समाप्त करना होवे तां वी अरदास, किसी चीज की लोड़ होवे तां वी अरदास। इंज कह लो कि गुरसिख की अरदास गुरु नाल एक ऐसा संबंध है, ये जो मंगना चाहे परमात्मा को ले सकता है। पर ख्याल करना, कईयां दा विश्वास टुट गया, कई गुरु नालों टुट गए, कईयां दी जबान ते गिला आ गया, शिकवा आ गया कि मैनू ते बड़ा चिर हो गया अरदास करदे आ, मेरी नहीं अरदास सुनी गई। आओ, दास ने यह प्रकरण ता आरंभ किया कि सानू अरदास ते यकीन आ जाए। जिन्हां दी जबान ते यह गिला है कि साड़ी अरदास कबूल नहीं हुई, भाई मैं उन्होंने यह गल कहनी चाहना हां, कमी साडे विच है, परमात्मा विच नहीं है। हो सकता है कि तू सही अखर अरदास दे वरते ही नहीं, जिवें अरदास करनी चाहिदी सी तू ओवें कीती नहीं, जिवें परमात्मा नूं अरदास सुनानी सी तू ओवें सुनाई नहीं। इसलिए साध संगत, आओ अज आपां अरदास दी विधि सीख लईए। जे ते अरदास विधि अनुसार होवे कदी बिरथी नहीं जा सकती, पर जे सानू पता ही नहीं अरदास करनी किवें है ते खिमा करना, फिर गुरु ते शिकवा करन दी कोई लोड़ नहीं। कमी साडे विच है, गुरु विच नहीं है। तुछ बुद्धि अनुसार मैं गुरु दरबार वल्लों कुछ बाणी दे प्रमाण तुहाडे समक्ष रख रहे हां, जरा ध्यान नाल सुन लेना अरदास दी विधि की है। प्रिंसीपल सतबीर सिंह जी लिखते ने, अरदास एक 5 मिनट का कैप्सूल है, पहले ख्याल कर लेना। अरदास एक 5 मिनट का कैप्सूल है, इस 5 मिनट के कैप्सूल अंदर समुचा इतिहास सिख पंथ का बंद किया हुआ है। हुण इन्हां 5 मिनटां दे विच अरदास किवें करनी है ध्यान करना। सब तो पहले अरदास की विधि, आपे जाने करें आप

वाणी के बोध नाम के जहाज साहेब धनगुरु अर्जुन पातशाह सतगुरु जी अपने मुखार बिंद तो अपनी रचना तो इन्हों बचना का उच्चारण करते ने हजूर फरमान करते ने प्यारिया गुरु नाल प्रीत किदां दी लाउणी है मालक नाल स्नेहे किदां दा जोड़ना है साहब जी सानू ओ रस्ता ओ मार्ग ओ प्यार भरे बचना नाल उन्हां जुगतियां नाल सानू ओ रस्ता दसते ने जिस रस्ते ते जिस मार्ग ते जांदे आ तू गुरु नानक नू मिल सकना साहब कृपा करते ने बख्शिश करते ने कलजुगी जीवां ते भाई हजूर कहते ने

है उपदेश कर देने प्यारे, अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। धन गुरु रामदास पातशाह हजूर कहते ने अहंकारियां निंदका पिठ दे नाम देव मुख लाए। नाम देव वर्गियां नू सतगुरु ने अपने हिरदे नाल ला रहा, अहंकारियां नू पिठ दे दिती मुख नहीं लाया। जिना नाम जपया सिमरन कीता भावे कोई वड्डा है भावे कोई नीवे, लेकिन भाई सिमरन करन वालियां नू नाम जपन वालियां नू सेवा करन वालियां नू मेरे साहब अपने गल दे नाल ला लेंदे ने। हजूर कहिंदे ने मान ना कीजै शरण परी जाए, हंकार ना कर प्यारे अभिमान ना कर, गुरु दे चरणा विच उहदी शरण विच आ जाए।

शिव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साई है। एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया, पाछा तू मेरे ते कृपा कर। किड्डी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याच हजूर।

शायद की रचना ते इको ही है लेकिन तेरे गुण बहुते ने। भगत कबीर जी महाराज उस मालिक के गुणा का अथाह ध्यान करते हुए अपने रचना तो कृपा करते ने ते आंदे ने

जे भाई छत्ता समुंदरां दे पानी दी शाही बना ले जावे। कलम करो बन राय सारी जंगल ते सारी बनस्पति दियां कलमां बना लिया जावन।

एटी प्यास है तेरे दीदार दी, एटी आस है तेरे दीदार दी, निर्या मालका कर कृपा मेरे दे।

भाई गुरु दा प्यारा मेनू मिला दे, कोई ऐसे गुरु दे प्यारे नाल मेल करा दे कि तेरे दर्शना दी जड़ी आस लगी हुई है वो मिट जावे। आओ भाई अरदास करिए, गुरु चरणा च तरला करिए। गुरु अर्जन पातशाह साहब अपने रसना तो आंद ने मन ऐसा नहीं हो करे, ऐसी प्रीत कर ले जिवें मछली ने पानी नाल कर ली। चात्रक ने पपिए ने स्वाति बूंद नाल कर ली है। भंवरे का प्यार फुल दे नाल है, सुगंधी नाल है। जिहड़ी प्रीत कदी टुटे ना पातशाह, मेरे मालका एहो जी प्रीत कर, एहो जी कृपा कर, मेरा मन भी तेरे चरणा नाल।

सिद्ध मंडली विच पहुंचे ता सिद्धा ने बेनती की थी सच्चे पातशाह दसो ओ साहिब कैसा है और उदी साहिबी कैसी है। गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे साचा साहिब साच ना है। ओ साहिब सच्चा है और उसका नाम भी सच्चा है। साचा साहिब।

दो दो तीन तीन दिन तुहाडे कोलों बाहर कोई गुरु सेवा लैके आके घंटा जोड़े झाड़िया करो। वो किस वास्ते के सच्चा पातशाह असी जोड़े झाड़ना लई है साडी सेवक बन के बीत जावे इहदे नाल ना जी वाड़ लग जांदी जिथे तुसी हो के आए हुंदे ना उत्थे वाड़ लग जांदी वाड़ तुहाडी निम्रता नाल उत्थे वाड़ लग जांदी गुरु इहनूं मैं दस नहीं सकदा लफ़्ज़ां च इशारा लैणा जितने असी बैठे हां बाबा दीप सिंह जी दा गुण हुण बारिश हो गई है ते अगला सवाल जवाब बड़े प्यारे है कैसा सीन होएगा मालक खड़ा होवे बाबा जी दे हाथ सवा ना लिबड़े होण कोला हाथ च फड़िया होवे ते ऐ सवाल कीता गुरु गोबिंद सिंह जी ने कोले क्यों मांजदा पिया दीप सिंह उन्होंने कहा जी सेवक बन के बीजे मैं करता ना बन जा हूं अगला सवाल बाबा दीप सिंह जी जो अगली बारी साझा करांगे वो उन्होंने किया कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज कृपा हो गई है हुण कोल खड़े हो ते मेरी भी एक सवाल जड़ा ना हो आप जी कृपा करो ओदा मैनू जवाब झोली च पाओ ते ओ सवाल सी कि गुरु दी खुशी किवें लई दी है आखो सतना बाबा दीप सिंह ने सवाल किया गुरु गोबिंद सिंह महाराज कि मेरी भी एक दिल च सवाल है भी सोचा सी अज पुछदा कल पुछदा है ते बाबा जी कहंदे गुरु गोबिंद सिंह जी दस की पुछदा है दीप सिंह कहंदे जी मेरा सवाल है कि गुरु दी खुशी किवें लई दी है गुरु दी खुशी किवें मिलदी है ओ जेड़ा जवाब गुरु गोबिंद सिंह जी ने दिता ओ अगले वीरवार आखो सतनाम बाबा जी सेवा लैन क्योंकि वह भी बन जाना यो 26 जनवरी तो बाद नेड़े नेड़े ही आ जाना प्रसंग यो ही चलना ते अज ते वह गल बन गई जेड़ा टेलीविजन सीरियल आली वह भी सीरियल इथे करके मुकांदे आ कि बीबी कहंदी हुण लाणा ही पैणा कल की होना है जी जेड़े बारिश करके गड्डिया च बैठे आ जां चारे मगर चले गए आ या रिश्तेदारी करके आया या जेड़ा परिवार करा रहा जे ते सारा किनका करंट लग जे फिर कहिंदा हुण अगले वीरवार आना जरूर है भी गुरु गोबिंद सिंह ने की जवाब दिता गुरु की खुशी

वही नदी के किनारे थे, दुनिया नु तारन वाला मेरा तन गुरु नानक समाधि लगा के बैठे।

इस अमृत को प्राप्त कौन कर दे हम, जिन भिम्बर से अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द विचार, जिन्होंने वही शब्द न सुने कन्ना कटोरे बना के निरल अमृत बाणी का रस पीता है, और खुशकिस्मत गुरु नानक दे दर ते सदा ही अमृत रस्त है, पर तीनों भागा वाले किसी महापुरुष ने लिखे है कि जिन्हों के अंदर प्रेम की रत्ती बिन अमलों तो खीवे, उन्होंने झूठे अमल की लोड़ ही नहीं, जिन्हों के अंदर प्रेम की रत्ती बिन अमलों तो खीवे, अठे पहर महल विच चानन बरन प्रेम दे दीवे, फिर एवें नहीं बलदे भाई दीवे। बाबा जी बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज कलेरा वाले महापुरुष फरमाते सन, दीवा जगाने वास्ते बड़ी मेहनत करनी पैंदी, पहला तो दीवा बनाइए, फिर उसनू पकाइए, फिर वास्ते तेल सरसों नपीड़ के करना पैंदा, सरसों कितों उगदी बड़ी मेहनत, फिर तेल पै गया अजे भी नहीं जगदा वट की लोड़, उहदे वास्ते कितनी मेहनत करनी पैंदी, फिर वट भी लगा रखी है हुण जगाइए भाई दीवा, ए सोहना दीवा जगाई किवें जगेगा, प्यार दे नाल, प्यार दे नाल दीवा जगे, जो भी जग गया दीवा ते लोकी आपे कहेंगे नहीं फलाने घर दीवा जगदे पे, आखो सी भाई सारे आखो भाई सरत माई भाई, जो मेरे धन गुरु मार्ग ने दरबार चाके जुड़े हो आओ भागा वाले हो, अपनी रसना पवित्र करो, सेवक दे कम सफले करो, प्यार नाल आखो सतनाम, धन्यवाद। जो गुरु दे प्यारे जुड़ बैठे हो, और गुरु जिसने सानू सबो कुछ दिता है, साडे वास्ते बारह बारह साल उदासियां धार दी, बेबे ने कहा सी वीर वे देखना निके निके बच्चे श्री चंद लखमीदास तुसी बाहर चले जाते हो, ए फिर उदास होके मेरे को आ जाते हैं, ते कई दिन बेबे साडा भी कोई बापू है, आखो सी अगला भी कोई बापू, दूजिया ने बापू अपने बच्चिया मठियाईया लिया के दें, खिलौने लिया के दें, तरह तरह की चीजा लिया के दें, बेबे साडा भी कोई बापू, वीर मैं इन्हों छाती ना ला के कहनी हाँ पुतो तुहाडा बापू दुनिया का बापू है, वीर हुण ना जा, हुण ना परदेसां नूं जा, तो प्यारी सत्संगत परमकारी दाता जी दोवां बच्चियां नूं श्री चंद ते लक्ष्मीदास गोडियां ते बैठे सानूं ठा दिता, पुत्र जगत का मिठा मेवा है प्यारे, पुत्र पिठ नाल आके लग जावे माता पिता की छाती चढ़ जाती है, पर मेरे दाते ने अपने पुत्रों नूं उठा के ते बेबे वाल मुखातर होके कहा, सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले, सुन के गल ए पीरां दे पीर बोले, रब आप ही पाल सी सारियां नूं, जद के रब दे नाल सब दुखी दिसन करा की मैं दुआ दुलारे, बेबे मेरे निरंकार रब बनाया संसार दुनिया दुखी है, काम करो लो मोहंकार दी अगली सादी, बेबे मेनू जान दे ना बिठा इतने संसार रोगी हो चुका है, ए संसार रोगी नाम दारू, नाम दा दारू दिता उस दाते ने जिस दाल गुरुपुरब मना रहे हो, यही दात होती है, आए कर प्यार नाल पढ़ो, पहले सेहत में ले तो पीछे सारी सही संगत गज के अपनी अपनी हाजरियां लगवा, बाबा जी बचन करते सन जरा संगत जाके रौला पाता है वह इतों कुछ नहीं ले जाता, जरा चुप करके बैठा रहा शब्द की धारणा नहीं करता
بابا جی کہندے سن او گرو کی دگاہ کا چور ہے تے جڑا گج کے بولدا ہے تے گرو نانک دے در تے دی حاضری لگ جاندی ہے گرو نانک حاضر ناظر تے آو لگاؤ حاضریاں ساڈا گرپور منایا سفلا ہو جائے پیاری ساتھ سنگت پہلا سیو بولے پیچھے ساری سنگت واہ گرو نانک

साथ बहुत तेरे जिथे संग में कोई ना साथ बिन साथ ना दिसे रंग विच को रहो संग हो तो।

तो इत्थे ही समाप्ति है। हार्दिक तौर ते गुरु साहिब, गुरु की संगत ते उन्हां समूह गुरु प्यारियां दा जिन्हां ने बड़ा सुंदर संगीतक ढंग नाल इस समागम रचिया है, उन्हां समूह दा धन्नवादी हां। इतने समय विच कीर्तन करदियां, कोई विचारां करदियां बेअंत अत्यंत भुलां गलतियां हो गईयां होणगियां, गुरु साहिब ते गुरु की संगत बख्शंद है। समूह दे धन्नवाद नाल फतेह दी सांझ पाईए जी।

उल्टी प्यारी टुरना किते गुरु सच्चे पातशाह वल मेरी पिठ ना हो जाती। सात सगत बोलो श्री। तुरते हुए पिछली प्यारी अद्दा

जिस नूं गुरु अंगद देव पातशाह दे चरणा विच थां मिल जावे ओ निखावां दा ओ तां थां वाला बन जांदा। सासगत बोलो श्री आ। जदों चली दा लफ्ज आखिया ते ओ जुलाई सचमुच चली हो गई, कपड़े फाड़न लगी। आप तां चले गए, जल दी सेवा जदों कीती अज 12 साल पूरे हो गए सेवा। अमृत वेला जदों होया दीवान सजिया, गुरु अंगद देव पातशाह ने आख्या बुलाओ बुलाओ बाबा अमरदास जी। जदों आए गुरु अंगद देव पातशाह सिंघासन तों खड़ो गए। अपने सिंघासन ते गुरु अमरदास जी नूं बिठाया, चरणा ते विच 5 पैसे ते नारियल रख के मत्था टेकिया। साध सजत बोलो श्री, आख्या अज तुहाडी सेवा संपूर्ण होई है, क्योंकि इस सेवा दे सदके ही तुसी सानू जित लिया है। इस सेवा दे बल ते ही तुसी सानू रिझा लिया है। ते फिर किडे वर दिते, आख्या कौन कहिंदा कि गुरु अमरदास निथावा है? ना भाई, गुरु अंगद देव पातशाह ने वर दिते, गुरु अमरदास निमाणिया दा मान, गुरु अमरदास नितानिया दा तान, गुरु अमरदास नियोटिया दी ओट, गुरु अमरदास नियासरिया दा आसरा, गुरु अमरदास निलजिया दी लज, गुरु अमरदास निपत्तिया दी पत, गुरु अमरदास नितरिया दी तार। गुरु अंगद देव पातशाह वर दिती जा रहे हन, गुरु अमरदास सच्चे पातशाह।

परम सम्मान योग सत्कार योग गुरु रूप हाजरीन जियो गुरु महाराज जी की अपार अपार बख्शंदगी है जिस दे तफैल बरकत बदौलत असानू गुरु महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर जीवन दाते दी परम पावन हाजरी अंदर गुरु दे उपदेश ते उदेश सुनन दा सुभाग प्राप्त होया है। रोज रोज असां निक्की जी मौत मरदे हां ते मौत तो बाद ए परमेश्वर दी ही रहमत है जो जी दान देंदा है। पंजाबी दा अखाण है सोया ते मोया बराबर ही हुंदे ने। सियाणे आखदे ने मौत एक लंबी नींद है ते नींद एक छोटे अरसे दी मौत। हर इंसान जदों रात सौंदा है ते सोया मोया बराबर ही हुंदा है। मौत तवील नींद ते नींद कुलील मौत। इसलिए गुरु महाराज ने फिर सानू जी दान दिता है ते भगती लाया है। ए गुरु दी वड्याई है या गुरमुखां दी वड्याई जो हर मिलने वाले नू ए दात देंदे हैं।

साहिब श्री गुरु रामदास जी राग कल्याण भुपाली दियां सुरावलियां विच सर्व दुखां नूं निवारण वाले पार ब्रह्म परमेश्वर प्रति इउं जाचना कर रहे ने।

राग प्रभाती दे इस रंजक स्वरूप विच भगत कबीर जी उस खालक दी नूरानी होंद संबंधी समुच्ची लोकाई नू उपदेश दे रहे ने। लोगा परम ना भूलह भाई, खालक खलक खलक मह खालक, पूर रहे हो सब ठाई।

विभास ते प्रभाती रागां दे सुमेल राग विभास प्रभाती दियां मधुर सुरावलियां विच भगत कबीर जी उपदेश दे रहे ने। प्रगटी जोत मिटिया अंधियारा राम रतन पाया करत बिचारा।

नौवें पातशाह साहेब श्री गुरु तेग बहादुर जी राग जैजावंती दे अंतर्गत विषय विकारां विच ग्रसे नाम विहूणे मन दी दशा दा बयान कर रहे हन। रे मन कौन गत होए है तेरी, एह जग में राम नाम सो तो नहीं सुनह कान, बिखियन स्यो अति लुभान मत नाहिन फेरी।

द्वारका दे मालिक और द्वापर युग दे मालिक भगवान कृष्ण जी ते गरीब सुदामा दोनों ही बचपन दे इको गुरु दे शिष्य, बचपन दोना दा इको गुरु दे पास गुजरिया, मगर ज्यों ज्यों वक्त बीतदा गया बड़े हो गए सुदामा गरीब रह गया, भगवान कृष्ण महाराजे बन गए, द्वारका नगरी दे मालिक बन गए। ते पाईसा पाई गुरदास जी ने बहुत गहरे तल ते जाके भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता नू सामने रखदे होए कुछ अपने विचार फरमान कीते हन पौड़ी विच। कहंदे ने कुछ मित्रता दियां निशानियां दित्तियां ने भगवान कृष्ण बारे ते सुदामे दे बारे कि किस तरह दी मित्रता सी। पाईसा फरमान करदे ने बिप सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए लागू होई बामणी मिल जगदीश दलिद्र गवाए। कहंदे ने बिपता दा मारिया दलिद्री सुदामा सारे कहंदे ने कि ए भगवान कृष्ण जो अज दे मालिक ने ए उनां दा बाल सखाई मित्र है। ते एडे वड्डे भगवान कृष्ण महाराजे जेड़े हन द्वारका नगरी दे जेड़े मालिक हन अनेकां गरीबां नूं दान करदे हन सुख दिंदे हन ते ए बाल सखाई मित्र सताउंदा होया इसनूं सारे कहंदे हन ए बाल सखाई मित्र है, इस सदाउंदा है बाल सखाई मित्र ते फिर भी गरीब है। रोज उसकी पत्नी क्योंकि ब्राह्मण है सुदामा ते एदी पत्नी नू ब्राह्मणी कहा है। कहंदे ने रोज ब्राह्मणी कहंदी है कि ए सुदामा तू जगदीश नू मिलते सही वो तेरे दुख दूर कर देवेगा। ते भाई साहब इसे मित्रता दियां निशानियां नू दसदे होए अगे फरमान करदे हैं।

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नूं सिंह द्वार कहा। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उस नूं होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उड़ीक विच बैठे हन। अंतरयामी भगवान कृष्ण दूरों सुदामे नूं देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाइसा फरमान करदे हन,

जी ने बड़े ही गहरे जाके बड़े ही गहरी विचार विच जाके फरमान की थी। किसे मित्र नू मिलना होवे ते मित्र नाल हाथ मिलाया जांदा, किसे मित्र नू मिलना चाहे ते गलवकड़ी विच लिया जांदा है, पर किसे मित्र नू मिलना होवे ते अपना सिंघासन छड़ के भी जाया जा सकता है दूरों देख के। मगर भगवान कृष्ण सिर्फ सिंघासन छड़ के सुदामे वाल नहीं बदे, कहंदे ने इतनी निम्रता नाल भगवान कृष्ण वधे सुदामे वाल, और सुदामे दे कोल जाके कहंदे ने सुदामे दी पहले प्रदक्षिणा ले। सुदामा खड़ा है और भगवान कृष्ण ओदी प्रदक्षिणा ले रहे हैं, और प्रदक्षिणा लेके फिर सुदामे दे पैरी पैंदे हन, ते पैरी पैके सुदामे गरीब नू अपने गले लगांदे हन। भाई साहब गहरे तल विच जाके सारे संसार नू ए मैसेज दे रहे हन भगवान कृष्ण दा, क्योंकि सुदामा उना दा बाल सखाई मित्र है, ते बाल सखाई मित्र होण दे नाते ओ दोनों एक गुरु दे शिष्य सन। ते जदों पहली वारी देखिया सुदामा मेरे द्वार ते आया है, कहंदे ने दूरों देखिया देखते सुदामे वल रहे हन, पर सुदामे दे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। उस गुरु दे जिस गुरु पासों दोना ने बचपन दे विच सिखिया लई है। सुदामे दे विच्चों भगवान कृष्ण अपने गुरु दे दर्शन करदे होए सुदामे वल वधे, ते प्रदक्षिणा लई जिस तरह के अपने गुरु दे ले रहे हन, फिर जिस तरह प्रदक्षिणा लैके पैरी पै गए, और पैरी पै के जदों तक पैरी पए हन उदों तक सुदामे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। ज्यों गुरु दे दर्शन हो गए ते सुदामे नू अपनी गलवकड़ी विच लाया, ते कहंदे ने फिर सुदामे नू लैके सिंघासन वल वधे।

ओदे कोल चावल बन्ने हुए सन पोटली दे विच ते भगवान कृष्ण ने खोए पुछिया कि मेरी भाभी ने की मेरे वास्ते भेजिया है। भाई साहब इहदा कोई जिक्र नहीं करते। भाई साहब कहिंदे हन जिहड़ा दसम द्वार पहुंच गया उसनू ते अपनी होश ही कोई नहीं। ओह की भगवान कृष्ण नू जवाब देवेगा? अंतर ध्यान कर दिता सुदामे नू। कहिंदे ने भगवान कृष्ण ने उस वक्त जदों ओहदे लेखे मेटण दा वक्त आया, क्योंकि गुरु शब्द नाल जोड़िया होया सी, ते पोटली चों इक इक चावल दा दाणा कढ के अपने मुंह विच पांदे गए। एक दाणा मुंह विच पाया ते धर्म दे दिता, दूसरा दाणा मुंह विच पाया दंदा थले चबाया ते अर्थ दे दिता, तीसरा दाणा मुंह विच चबाया ते कहंदे ने भाई साहब भाई गुरुदास जी उस दियां सारियां कामनावां पूरियां कर दित्तियां, चौथा दाणा मुंह विच चबाया ते चबा के आशीर्वाद दिता कि जा सुदामा तू मुक्ति भी प्राप्त कर गया है। धर्म अर्थ काम मोख का दाता भगवान कृष्ण ने चारे पदार्थ उसनू दे दिते ते भाई साहब फरमान कर

एक कबीर साहब जी का बेनती का शब्द पांच सत मिनटा विच पढ़ के समय सिर समाप्ति पातशाह ने मेहर की है जिन्हा जिन्ह ने हाजरिया भरिया हैं तुहाडियां हाजरिया पातशाह लेखे लावन। कबीर साहब जी निरंकार दे बूहे अगे कुछ इस तरह की बेनती करते हैं पढ़ के समाप्ति।